जद गंढी सतवत जनेऊ जी का है ना पांडे कत ना ए टुटे ना मर लगे ना ए हो जले ना जाए तन सो मानस नानिका जो गल चले प।

लख ठगियां पहना मियां रात दिन श्री नाल तग कपाहुं पतिए बामण वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए वो एक प्राणा छुट्टिए।

0: महला पहला
1: ये मुहब का कर्म है कर्म पितरी दे
0: अगे वसे आनी है पितरी चोर करे वड़ी हद लाल।

जेकर सूतक मनिए सबसे सूतक होए, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अनेके जिया बाज न कोए, पहला पानी जियो है जितारिया सब कोए, सूत क्यों कर रखिए सूत पवेर सोए।

पवन गुरु पानी पिता माता धर्म महत दिवस रात तो दाई दाया खेले सगल जगत।

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां, आरता मैंने मंगता। जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत अन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

उनका शब्द रतन है जित जड़ा शब्द रतन जिस मन लगा हुआ सुबह शब्द से ते मन मेरा शब्द

0: सारे पढ़ो।
1: ए सची जी थार रे नारायण, ए सची जी थार।
2: चंगी तरह समझ ला, सोच ला, विचार ला, और है की

0: जेहा लिखिया तेहा पाया, जेहा पुरब कमाया, तन सरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग तंदे लाया। अलानिया मेरे भाईओ सबना ए भयान,
1: इथे
0: तंदा कूड़ा चार देहा, आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना जो मैं माना, गर्भ कीजे।

0: करके पर रखना, चार प्रकरण करके सुनाने से जाते करना स्वाद मित्र कि स्वाद पूरा है तो मित्र हम तेरे स्वाद पूरा नहीं तो वो मित्र मुखाकृत भी कर लगे निंदा भी कर लग गया जित दिन स्वाद ना उपजे तित दिन बोलन गम सुदामे जी प्रकर्मा करके छाती मार लाया न लेके आए ते जिस आसन से आ बैठे सब सुदामे ने बिठा शुक्रनी से राज कर दिया जाओ मेरा मित्र आया है जल ले आओ सुदामे ने चरण को रुक्मणी से राज का पानी कैसे भगवान कृष्ण सुदामे नाम मिठे मिठे वचन कर सुदामे कितना चिर पिछे नहीं कुमार चाहते तेरी हालत की होगी तेरी दिशा की बन गई है ऐसे बिहार बिहार एक अंतित जाल पड़े पद को तेरे पैर झंडे चुके जितनी कोई भी थी पर सुदामा जी को
1: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है।

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह करुणा का राग है। पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ठ रामकली सद आनंद साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानिक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषव अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषव स्वर का त्याग किया जाता है। इस दे गाउण दा समा दिन दा पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। यह गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है अते इस नूं राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। इस नूं गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ये शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नूं असी जो खो चुके हां, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण कीती है जिथे वो आखदे हन, असी मंजिल दे करीब तक ही जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों, उसकी मंजिल नालों, उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नूं यह नहीं पता कि वह जा किधर नूं रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानूं यह पता नहीं तुसीं किधरों आ रहे हो और किधर नूं जा रहे हो, बस ये आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे तो कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

0: सतसंग जी दास ने आप जी की सेवा दे विच 10 दिन रहना है। पिछले 10 दिन ओमान मस्कट जो 10 दिन का लगातार कीर्तन करन दा मौका मिलिया, उस तो बाद कल उत्थे कीर्तन की समाप्त हुई, कल ही फ्लाइट ली और सारी रात ट्रैवल दे विच गुजरी, अज इत्थे सुबह पहुंचे हाँ। आप जी दे पहली दफा सिंगापुर विखे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया है, ये मेरे धन भाग हैं। तो बाकी 10 दिन जो हैं ओ महाराज जी ने जो इस शब्द दे विच आख्या है उसे दी ही एक विचार दी लड़ी रहेगी, अते उस लड़ी नू आप जी कोशिश करना के पूरी दी पूरी सुनन दी कोशिश करना। सो इस टॉपिक दे उते 10 दिन कीर्तन होएगा। आप जी ने बहुत ध्यान नाल शब्द सुनिया होएगा तो गुरु साहब जी ने साड़ी जिंदगी दे 3 एरियाज नू एड्रेस कीता है। वो केड़े केड़े हैं? बॉडी, माइंड एंड सोल। तिन्ना नू गुरु साहब जी ने इस शब्द दे विच संबोधन किया है। काया नू आख्या है, काया नू एड्रेस किया है, हों तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। कि काया दे प्रति भी सानू कुछ समझण दी जरूरत है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जो सिख्या है काया दे प्रति, कि काया की है, इसका पोटेंशियल की है, इसकी कैपेबिलिटी की है, एक कादे वास्ते मिली है, एक की वस्तु है, असी ओ सुनना है ताकि असी अपनी काया नू जिमें वर्तना चाहिदा है उमें वर्त सकी। काया है बहुत एक स्थूल चीज जो नजर आती है, सॉलिड है, ग्रॉस है, माइंड उस तो सटल है। गुरु महाराज जी ने इस शब्द दे विच काया नू एड्रेस किया है, फिर माइंड नू भी किया है, मन नू भी संबोधन किया है। कहते हैं सुन मूर्ख मन अजाणा। मन नू जिसले एड्रेस किया तो आख्या कि यह सुधी मूर्खता का ही घर है, फिर उस दे नाल किवें डील करना है। ते तीसरा हिस्सा है जीड़ा जीव आत्मा, आत्मा नू महाराज जी ने रूह नू सोल नू एड्रेस किया है। सो इन 10 दिनों दे विच असी ये तिन्ने एरियाज जो हैं वो कवर करांगे, तिन्ना उत्ते विचार करांगे। शरीर दे प्रति समझांगे क्योंकि शरीर अते मन अते आत्मा जितनी देर तक ये तिन्ने दे तिन्ने एक हारमनी दे विच नहीं आ जांदे, एक दूसरे दे नाल ट्यूनिंग नहीं हो जांदे, उतनी देर तक साड़ी लाइफ जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट दे विच, उतनी देर तक साड़ी लाइफ दे विच कन्फ्यूजन, उतनी देर तक साड़ी लाइफ दे विच परमार्थ नहीं आ सकता। सो समा अज समाप्त है। अज की विचार आप जी की सेवा दे विच जो रखी है वो इत्थे ही समाप्त करते हैं। अज तो सिर्फ आप जी नू जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस किया है कि किस चीज उत्ते 10 दिन कीर्तन होंगे। आप जी वक्त से रोजाना आओ, होर भी संगतां नू लैके आओ ताकि असीं गुरु बाबा जी की जो गुरमत है उसनू सुन सकीए, उसनू विचार सकीए, तो उस तो अपनी जिंदगियां दे विच जो साडे जीवन का रूहानी पक्ष है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, आत्मक जीवन है, उस वल नू असीं कदम वधा सकीए, अपने जीवन की यात्रा असी भी सफल कर सकी। आज आप जी एक शब्द जरूर नाल लेके जायो क्योंकि सारा कीर्तन तो जांदे जांदे याद नहीं ना रहा करता, पर एक पॉइंट ते नाल लेके जा सकते हो जिसनों असी आख सकते हैं कि फूड फॉर द थॉट। वो ये है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज आखते हैं कि जिंदगी एक जर्नी है। वो कहते हैं मेरी सक्सेस इस गल दे विच है, मैं सक्सेसफुल इस करके हाँ कि मैं अपनी जिंदगी दी यात्रा दी मंजिल ते पहुंच गया हाँ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੌਂਡਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वडियाई है या गुरमुखा दी वडियाई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चिए वर्तिए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सागर भरे आराम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजयाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहने की जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवा ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटाण वाला, इसम फाइल। ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन। सरार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही पेता नू सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह। बाबा नंद लाल जी कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है के रोख रूहान की रोजी ना टारे। रोजी हिराज विलोक तराजक रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेनु मनदे ने तेरे प्रेमी ने तेरी होंद दे धारनी ने तस्लीम करने वाले ने उना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने उना दी ता गल की करनी है। उना वल ता है प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है। पर तू ते एडा बेअंत है एडा बेनियाज है। रोजी हिराज विलोक तराज कर रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखियां, रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखियां रूहां नु भी ताजगियां देना है, रुखियां रूहां नु भी सुखियां रूहां नु भी पालदा है। जिन्हां विच लचक ना होवे, लचकदार लकड़ी नु दरख्त गजा दे जांदा है, जड़ां गजाज दे जांदियां ने, हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है। पर एक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा, समझो कि मर गई, अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखीए ते कमाल दी गल है, इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा, उहदे विच लचक रहिंदी है। ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है, मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा। जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उहनू मुर्दा समझो, क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं, मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहिंदे ने सच्चे पातशाह तू बड़ा बेअंत है, जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने, उहनां नूं वी तू अपने गैबी खजाने विचों वडमुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए। धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेकां पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है, जो तेतों मुनकर ने तेरियां दातां भी ले जांदे ने, तेरियां बख्शियां भी मान जांदे ने। हे मुने परमेश्वर तेरियां नेमतां भी मान जांदे ने, तेतों मुनकर भी ने, पर फिर भी तू उन्हां दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने रोख रूहान की रोजी ना टार। तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने कि मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है, मैं हुण निश्चा कर लिया है कि दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगके ही देना है। मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा, मेरे गुरु ने मैनू सोझी पुआ दिती है। गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है कि परमेश्वर ही वड्डा दाता है, ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए, इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी, हाजत नहीं रह जांदी। ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है। ते मैं हुण इस निश्चय ते पहुंचा हां किथों मंगा हो, कौन है इसते मुकाबले दा दाता? साचा साहिब है ते वड्डा दाता है, उसदे भंडारे अखुट ने। वाह वाह।
मोह दूजी नाही थोर जिस पे हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है। जदों मैं दुआ कीती, जदों इल्तजा कीती, जदों खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इसे तरह मैं सारे घरां दे अग्गों दी आया, बीबियां माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदां कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे तां इहो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखड़ा ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू कहा सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों नहीं? ओ पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है पे इत्थे अगे आ जा, तुसी ता कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ये निश्चय हो गया है मोह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता ठीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल ठीठ होके नहीं मंगदा, ठीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना। जब तक कोई ठीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नू भी ऐसा ही एक जगह आख्या, ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता, आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करन कारण समर्थ कर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदों तक कई बारी इनू शक्कां शकूकां दा शुभार दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नू छड़ के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे।